0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने ना जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क

0: थे।
1: जी
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं, वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें

0: परिभाषित कैसे करें?
1: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
2: यस मैम।
1: वाह, क्या बात है
3: मैम।
1: हाँ बेटी,
3: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
3: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
1: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
3: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
3: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार है।

0: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी धोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, तैयार है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है।
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
13: हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
13: सिंचाई टैंक,
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें।

0: चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
1: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
2: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
3: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
1: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु

0: हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है।
3: भाई बहुत

0: अच्छा सवाल पूछा है तुमने भाई। ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
1: क्या 20 करोड़ साल?
0: तब हमारी धरती नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
0: नव्या, अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित, तुम बताओ।
2: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
0: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
0: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
0: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर, ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा, अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट

0: गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा।
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
2: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, तेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि तेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने।

0: हिमालय?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
1: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
1: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
1: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
1: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थीं।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
5: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
6: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
3: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका

0: चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
2: ग्रेट, मार्वेलस।
3: हाँ, अफसर ऐसा ही होता है।
2: वंडरफुल।
4: हाँ हाँ
5: हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है। कलाकार ने बताया,
0: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
6: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
6: कहीं ऐसा ना हो कि
1: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: நேர்களது வரை தேசிய கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கிய விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள்.

0: 2.6 மெகாஹெர்ட்ஸில் நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு ரசிக்கலாம். மாலை நேர நிகழ்ச்சிகளில் உங்களோடு கலந்திருந்து விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் கபில் தேவ்.
1: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
2: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
1: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,250। Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward decline.
2: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स लगभग 200 अंक लुढ़का और निफ्टी 24,250 से नीचे बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा में भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत का कायाकल्प ढांचागत है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से संभव हुआ, और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी।

0: An important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 183 अंक यानी 0.24% गिरकर 77,473 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 127 अंक यानी 0.52% लुढ़क कर 24,208 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में मामूली बदलाव से 0.1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.8% का उछाल देखा गया। इससे पहले बाजार की शुरुआत मिली जुली रही और शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे चला बिकवाली का दबाव बढ़ता गया, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट में आ गए। सत्र के उत्तरार्ध में तेज गिरावट से सूचकांक में और भी नुकसान देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 183 points or 0.24% to close at 77,473. The Nifty lost 127 points or 0.52% to settle at 24,208. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index dipped 0.1%, while the Small-Cap 100 Index rose 0.8%. Earlier, the markets opened on a mixed note and traded with modest gains. However, as the session progressed, selling pressure intensified, dragging both benchmark indices into negative territory. The decline gathered momentum during the latter part of the session, with the indices extending their losses and eventually closing to their respective day's low levels.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंफोसिस और भारतीय एयरटेल 1.9%, लार्सन एंड टूब्रो में 1.8% और पावर ग्रिड 1.5% नीचे आया। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.9% और एक्सिस बैंक में 1.3% की तेजी दर्ज हुई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 16 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, telecommunication lost 1.3%, IT fell 1% and focused IT lost 0.9%. In contrast, metal as well as commodities rose 1.4%, PSU bank increased 0.8% and financial services added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,330 companies advanced, shares of 1,990 companies declined, whereas shares of 220 companies remained unchanged.
1: ईद ए मिलाद के अवकाश के कारण आज भारतीय मुद्रा बाजार बंद रहा। पिछले सत्र में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 95.41 रुपये पर बंद हुआ। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रकाश जी, इस पूरे महीने अगर अभी तक का सेंसेक्स और निफ्टी का कारोबार देखें तो हम देख सकते हैं कि गिरावट का रुख देखने को हमें मिल रहा है। क्या कारण रहे जो इसे महज मुनाफा वसूली माना जाए या FIS या DIS ने हाथ खींच लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि

0: ज्यादा गिर सकता था, लेकिन डीआईएस ने कई मौकों पर हाथ लगाया है, संभाला है मार्केट को।
1: चलो बात करते हैं आज की, आज से शुरुआत करते हैं
0: जी।
1: आज के जो हेडलाइन नंबर्स हैं, जो इंडाइसिस हैं, नीचे गिरे हुए हैं
0: जी।
1: लेकिन आपने अपने दोनों ने रीड आउट्स में पढ़ा कि जो ब्रॉडर मार्केट है उन दोनों में, फॉर इंस्टेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगर हम डेटा देखें तो उसमें 1966 शेयर्स एडवांस हुए हैं और उसके मुकाबले में 1548 शेयर्स डिक्लाइन हुए
0: जी।
1: तो क्या क्या एक माहौल है। और जब जबकि आपका NSE जो इंडेक्स है, NSE निफ्टी 50, वो डाउन हुआ है 127 पॉइंट से
0: जी।
1: और ब्रॉडर मार्केट आपको ग्रीन दिखा रही है
0: जी।
1: तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, बड़ा रुचि वाला फेज है। और जो बड़े शेयर्स हैं, जो लार्ज कैप्स शेयर्स हैं, जो निफ्टी 50 में आते हैं या सेंसेक्स में आते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई होगी। लेकिन जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, कुछ सेक्टोरल हैं।

0: तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ है, बड़ा रुचि वाला फेज़ है। और जो बड़े शेयर्स हैं, जो लार्ज कैप्स शेयर्स हैं, जो निफ्टी 50 में आते हैं या सेंसेक्स में आते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई होगी। लेकिन जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, कुछ सेक्टोरल हैं,
1: जी
0: उनमें ये जाहिर हो रही है आज की बात। कि अब बात करते हैं जो आपने पिछले कुछ दिनों या महीनों की बात करी, ये बात बिल्कुल सच है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने यहाँ से बिकवाली कर रहे थे, लेकिन बिकवाली थोड़ी थमी है अभी, हल्का फुल्का ग्रीन ग्रीन कभी दिखता है उनका। और ये बात सच है, उसके कई ग्लोबल रीजंस हैं। हमारी वैल्यूएशन भी उनको महंगी लगती है, और कुछ AI का प्ले जिसको बोलते हैं, कि
1: जी
0: हमारे जो IT स्टॉक्स हैं, AI इस टाइम उसमें चलन में है,
1: जी
0: पूरे संसार में AI में चलन है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो
1: जी
0: है इन्वेस्टमेंट उसमें जा रहा है, और उसकी जो AI की वैल्यू चेन है, जिसमें जिनको एक बोलते हैं हाइपर स्केलर्स,
1: जी
0: जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कमिट किए हुए हैं,
1: जी
0: फिर उन उसी वैल्यू चेन में आता है चिप मेकर्स, फिर उसी वैल्यू चेन में आ गया प्राइवेट इक्विटी। तो ये सारा AI का जो प्ले है, उस प्ले को कहीं ना कहीं हमारे इंडियन IT सिस्टम के अपोजिट में रखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा इंप्रेशन किया जा रहा है हमारा इंडियन IT सिस्टम उसका एज इफ पार्ट नहीं है।
1: जी
0: तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन अब क्या है कि कंसर्न्स आ रही हैं AI के इन्वेस्टमेंट को लेके, वहाँ का जो शेयर होल्डर्स है बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो भी उनको क्वेश्चन, उनके दिमाग में एक तरह का डाउट आ रहा है कि जो इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी उसमें कमिट कर रही हैं, उसका रिटर्न हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक
1: जी
0: तरह का भय का वो माहौल बना हुआ है।
1: ओके
0: लेकिन ऐसा भी नहीं है कि AI कोई ख़त्म हो जाए, AI इज़ हेयर टू स्टे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक सा फेज है, वी हैव टू लिव विद इट।
1: आपने वैल्यूएशन की बात की, तो क्या भारतीय बाजार के लिए चिंता का विषय है?
0: चिंता की बात नहीं है, एक चीज़ महंगी सस्ती की बात होती है। मान लीजिए हमारा एक मोमेंटम है हमारे शेयर्स में, अभी भी हमारे शेयर्स कई ऐसे हैं जो 100 PE पे मिल रहे हैं।
1: जी
0: अब कोई आदमी 100 PE पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इन्वेस्ट करेगा, तो एक तो होता भाव में, जब आप चलते हैं मोमेंटम इतना बढ़ जाता है, तो उसमें भाव में जब आप फंस जाते हैं,
1: भावनाओं में बहना।
0: हाँ, तो ये अच्छा नहीं होता। तो
1: जी
0: वो अपना एक उनका एक प्रूडेंशियल सिस्टम है, तो उसमें नहीं बैठते तो नहीं बैठते, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
2: प्रकाश जी, वी हैव सीन दैट द मार्केट्स हैव बीन रिएक्टिंग अ लॉट टू द जियो पोलिटिकल सिचुएशंस, स्पेशली टू द यू नो द मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट international crude oil prices have eased to a certain extent, we still see that the markets did not react to that. Markets, you know, normally when that happens, markets react a little positively to the sliding, you know, to the decline in the international crude oil prices. But that's not happened right now. Do you think that's also because to do with the fact that investors and markets overall are still a little wary of the situation between US and Iran, or the continuing stalemate between the two sides, and therefore the decline in or the slide in international crude oil prices is not really reflecting in a positive movement in the markets?
0: Well, definitely there's a the situation in the Middle East continues to remain volatile, and you talked about the crude oil prices. Crude oil prices also continue to remain volatile. It's right. Only today that you see a slight dip in the crude oil price in the benchmark below 90, and then immediately you see the result in the market, especially our market. And whenever you have this situation where crude oil prices soften, rupee improves,
2: yes,
0: against dollar for logical reasons,
2: yes,
0: right? So the situation in the Middle East continues to remain highly unpredictable,
2: right,
0: volatile, and then leading to other geopolitical and geo-economic.
2: Yes.
0: You have this tariff wall war,
2: yeah,
0: and the tariff wall. Somebody wants to erect a tariff wall, the other wants to break it.
2: Yes.
0: So you have this situation which is not very conducive for the investment climate, so to speak.
2: Yeah. So if you look at these sectoral indices on the BSE today, we see that IT fell 1% and focus IT lost 0.9%. Again, I'll come back to geopolitical situation. We have the US for now has paused, you know, put a pause on the...

0: release, or rather, you know, release of the visa. They have the US has now paused the visas across all sections. And for Indian markets, or for India, you know, all those IT sector is a big earner. So do you think that the slide that we're seeing in the IT sector today, if we talk about the sectoral indices, is to do with the fact that the US has right now put a pause on visa appointments?
1: Actually, when it comes to IT, IT sector anyways had remained under pressure.
0: Okay. Yeah.
1: For various reasons, yes. Right? And several of the IT stocks are available even today at a very attractive price to earning ratio. Sometime you might say mouth watering kind of evaluation. But when it comes to today's movement of IT stocks, I think it's a definitely, I'll agree with you, it's a knee-jerk reaction to this very stringent kind of measures being initiated by the US, because after all, our entire IT paradigm is based on H-1B visas and, you know, movement of people, movement of... So naturally, it's a knee-jerk reaction. It remains to be seen how it plays out. Hopefully, things should clear out in a few days.
2: Right. Prakash ji, banking or financial sector jo hai, aapko kya lagta hai ki ye market ko mazbooti de rahe hain? Aise samay mein jab tamam banking ki jo pranaliyan hain, un par bharosa karein ya na karein, ye bhi baat aa jati hai. Aur kahin na kahin jo ओवरऑल जो हम अगर देखते हैं, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने जितना बैंकिंग में एस्टेब्लिशमेंट किया है वो सपोर्ट कर रहा है?
1: देखिए, हमारा जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है बहुत अच्छी सिचुएशन में है, उनकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी है. और जहाँ तक ये सवाल है कि डे टू डे मूवमेंट का, हमारी जो इंडियन बैंकिंग है पूरा, नॉट ओनली बैंकिंग द एंटायर फाइनेंशियल
2: इंस्टीट्यूशन
1: सिस्टम, NBFCs कंपनीज जो हैं, कुछ अच्छी कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज बड़ा अच्छा कर रही हैं. और जहाँ तक डे टू डे मूवमेंट का सवाल है, जैसे अनुभा जी ने जिक्र किया कि क्रूड ऑयल का, जैसे ही क्रूड ऑयल में मूवमेंट आती है इवन बैंकिंग, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर,
2: राइट राइट,
1: तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात होती है तो बैंकिंग में उसका असर पड़ता है. तो ये है, बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हमारा बड़ी अच्छी हेल्थ में है. हमारा जो NPA सिचुएशन है, जो नॉन परफॉर्मिंग, बड़ी वेल विद इन कंट्रोल है. और अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, मझोले बैंक्स हों, छोटे बैंक्स हों, कोई दिक्कत नहीं है. वही एक सेक्टर है विच इज़ वेरी गुड.
2: आपने क्रूड ऑयल का जिक्र किया, एक सवाल मेरे जहन में आ गया, मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन अभी बन रही है, ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ये कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं?
1: ये चीज़ें माने,
2: मतलब कहने का कि हमारी जो जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं क्रूड ऑयल से लेकर के, क्रूड ऑयल की
1: हमारी इकोनॉमी के लिए कितना,
2: जी हाँ, क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा मिक्स करें तो.
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, क्रूड ऑयल के दाम थोड़े सॉफन हुए हैं, अभी भी 90 के आसपास हैं, हमारे लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है. हम चाहेंगे ये 80 के नीचे आए, 80 के नीचे आए, 75 पे आए, तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे को, हमारी एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है ना. तो ये जो निखिल जी जो है ना, हमारी जो आपको गैप नज़र आता है, $90 हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है. जो क्रूड का रेट है $90 पर बैरल इज नॉट ए कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर, वी वुड लाइक इट टू कम डाउन. दैट्स व्हाई वी वुड लाइक अ नॉर्मलसी इन द हॉर्मोन्स.
0: यस,
1: एंड बड़ा जरूरी है होना हमारे लिए.
0: वी डू हैव अ स्टोरी लेटर ऑन इन द प्रोग्राम दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, बट बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज सेड दैट इंडिया स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड ऑफर्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल, सस्टेन्ड ग्रोथ, a young population, expanding consumption, and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto, Ms. Sitaraman said, India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class, and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming

0: set at 15%, 25%, and 50%, matching the corresponding US rate for each product targeted under American Section 338 and Section 232 tariffs. Ottawa has also unveiled a $7.5 billion support package for workers and businesses affected by the escalating trade dispute. A very quick comment from you, Prakashji, on this. Although this is, like we were discussing earlier, the trade war is essentially between the US and Canada. And Canada is the biggest trading partner. Canada's trading biggest trading partner is the US. But do you see this trade war affecting the rest of the economies and spilling over some spillover effect?
1: Well, it sends signals. The way Canada is handling this situation, and it also then you have also with the kind of next month she and Trump are going to meet again, so it sends signals as to what kind of economic scenario is unfolding before us, and then accordingly countries after countries need to put up their strategies together.
0: Right.
2: ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने होर्मुज जल डमरों मध्य से गुजरने वाले जहाजों के यातायात के प्रबंधन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा की. ईरान अमरीका संघर्ष शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद भी ये जलमार्ग बाधित हैं. एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में एक संयुक्त अस्थायी नौवहन गलियारे का प्रावधान और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक स्थायी जहाजरानी गलियारे की शुरुआत और होर्मुज के प्रशासनिक भविष्य के लिए किसी समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से तकनीकी मुद्दों के साथ वार्ता जारी रखेंगे. इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबावादी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दोनों देश एक अस्थायी मार्ग पर सहमत हो गए हैं. ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और ओमान अगले 30 से 60 दिन तक एक नए स्थायी और टिकाऊ जलमार्ग पर सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे. होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा शुरू करने के अमेरिका के प्रयासों के ओमान के हस्तक्षेप की स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह ओमान पर बम गिराने की धमकी देने के बाद यह बैठक हुई है. इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी?
1: जैसे मैंने अनुभा जी से जिक्र किया, सिचुएशन अभी को क्लियर नहीं है मिडल ईस्ट में, और क्लियर नहीं है तो ये एंग्जाइटी का कारण तो है ही सही. तेल आज 90 के आसपास थोड़ा सॉफ्ट हुआ, कल कैसे होगा किसी को मालूम नहीं. तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये डील हो जाए. ओमान, ईरान और अमेरिका देख रहा है इसको आपस में, ताकि हमारा जो पूरे विश्व को इससे फ़ायदा है और थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बड़ा ना कुछ ख़राब सा हो रखा है पिछले कई महीनों से, जब से
2: ऑलमोस्ट छः महीने
1: हो गए. तो इसलिए लेट्स होप कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, और ये सब के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा है. अमेरिकन इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आ रही है, मिडल ईस्ट के लिए अच्छा है. मिडल ईस्ट के सारे कंट्री सफ़र कर रहे हैं, हमारे भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और तेल का भाव जब बढ़ता है तो जाहिर है दिक्कत होती है. तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से निकले.
2: जी
0: Prakash, you were saying that, of course, everybody expects some kind of a positive, outcome from this meeting. But again, as we were discussing, it's still a very fluid situation. What is happening in West Asia for everyone? But do you think that's kind of this fact that Iran and Oman have decided to have some kind of a phased approach and discussions on the opening of Strait of Hormuz? It's I would say a silver lining. Would you call it that?
1: Well, I would tend to agree with you to some extent, because Iran and Oman cannot do anything independent of the US.
0: Okay.
1: US, there's a huge pressure on the US administration, on the US government, Trump government, because of the midterm elections there. Uh-huh. People are suffering,
0: yes,
1: because of inflation. Interest rates are really shooting through the roof. The bond yields, which represent the cost of borrowing, is crossing 2 decades high.
0: Yes.
1: So those economic pressures, I hope, would force the countries in the conflict to see sense, so that an amicable solution is hammered out of the Hormuz.
0: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices fell to a 2-week low as renewed talks between Iran and Oman raised hopes that the Strait of Hormuz could be reopened. Brent crude was trading 2.7% down at $86.20 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% lower

0: at $80.18 per बैरल when reports last came in.
1: सराफा बाजार में सोना 0.4% गिरकर 161,337 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी आधा प्रतिशत बढ़कर 242,959 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। प्रकाश जी, एक रुख हम देख रहे हैं, कभी गोल्ड का दाम बढ़ता है तो सिल्वर का नीचे आता है, सिल्वर अगर नीचे आता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड अगर नीचे सिल्वर ऊपर जाता है, ये ट्रेंड देख रहे हो। साथ में एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आने वाली जो RBI की मौद्रिक नीति की जो भी बैठक होगी उसमें क्या RBI के लिए चिंता का विषय हो सकता है तमाम चीज़ें वैश्विक घटनाक्रमों को, और जो देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ जिनमें शुगर वगैरह भी शामिल हैं?
2: RBI की मीटिंग तो अभी दूर है
1: जी,
2: लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 15 दिन में 10 दिन में बड़ा पॉजिटिव है
1: जी,
2: और पूरे वर्ल्ड में दोबारा से गोल्ड की तरफ रुझान हो गया है। और जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, यानी एनर्जी यूसेज उसका काफ़ी रहता है, तो गोल्ड का जो है पॉजिटिव है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अभी और काफ़ी रन बाकी है और भी थोड़ा सा मजबूती आ सकती है। तो ये तो हुआ गोल्ड का। और जहाँ तक RBI का सवाल है, RBI हर चीज़ का जायज़ा लेता है, क्योंकि जो वैश्विक कारण है वो तो बड़े इम्पोर्टेंट हो चले हैं ना, हम जो जो आजकल चल रहा है उसको तो इग्नोर करके आप चल ही नहीं सकते ना, ये दिक्कत है।
1: तो प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices declines and six falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,250. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward slide. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை. நேரம் 11:37:52.

0: नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00861851428490 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 00861398999012 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779709107500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार जताते हुए श्री बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि एकजुटता की यह भावना दोनों देशों के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, जिसे हम बेहद महत्व देते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तैयार है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। तिब्बत से आरंभ हुई भीषण बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गाँव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लापता हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भीषण बाढ़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले और सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने C-130J विमान से आपातकालीन सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विदेश प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel.

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்றைய இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं. इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं. इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं. चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ से आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं. मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है. उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं. इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है. श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की

पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-30J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपये जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चीन ने भी नेपाल को तुरंत आर्थिक मदद देने का वादा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिजोरम में 6 सड़कों के निर्माण के लिए 256,70,00,000 रुपए मंजूर किए जाने की घोषणा की है। श्री गडकरी ने बताया कि इन सड़कों की कुल लंबाई 82.89 किलोमीटर होगी और इनका निर्माण केंद्रीय सड़क अवसंरचना योजना के अंतर्गत किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग में हुए विकास और इस क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की समुद्र में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त परमाणु प्रौद्योगिकी पहल के शुभारंभ से पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने वॉशिंगटन में अमरीकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भूटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक बाढ़ आई से फंसे भारतीयों नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है।

0: विश्व बैंक ने बाढ़ से प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिस्लेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बने रहने में भारत के लिए कौशल के साथ साथ बौद्धिक क्षमता निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने नई दिल्ली में क्षमता निर्माण पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी और वैश्विक परिवेश का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए क्षमता निर्माण को व्यक्तिगत कौशल आधारित दृष्टिकोण से विकसित होकर एक सामूहिक और समग्र समाज के प्रयास में तब्दील होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन रहने की बात कही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepalese citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Prime Minister of Nepal Balendra Shah thanked Prime Minister Narendra Modi for his warm words of solidarity and offering all possible humanitarian assistance to the flood-hit country for the rescue and relief operations. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977-985-131-6807. +977-970-910-7500 and +977-981-032-6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in 6 districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighborhood.

0: ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகா ஹெட்ஸில் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உல்லாசம் மற்றும் விஐபி ஆகிய திரைப்படங்களுக்காக ஒரு சில பாடல்கள் வந்து சென்றன. பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं, पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार व्यक्त करते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके इस एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थाई आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव

0: राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मेघालय मंत्रिमंडल ने चक्रवात के अलावा आंधी तूफान और तेज हवाओं को राज्य में स्थानीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता देना और सुनिश्चित करना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समय पर राहत मिल सके। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhotekoshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepalese citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Prime Minister of Nepal Balendra Shah thanked Prime Minister Narendra Modi for his warm words of solidarity and offering all possible humanitarian assistance to the flood-hit country for the rescue and relief operations. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline plus 977-985-131-6807 plus 977-970-910-7500 and plus 977-981-032-6117. These emergency contact numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in 6 districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath

0: ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல் 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனிய ராகம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இக்பால் பானோ அவர்களின் பாட்டு மற்றும் கிருஷ்ணா ஹங்கல் ஆகியோரின் பாட்டு இடம்பெற்றது. பண்பகையில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086 0086 185 1428 4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086 139 8999 0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977 985 131 6807 और 977 970 910 7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव और राहत पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपये की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रेमी राष्ट्र के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इस संवाद में युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में रखा गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और

स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेइचिंग में आयोजित किया गया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश के खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। नेपाल तिब्बत सीमा के भुटकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल के कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00801851429095 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए C-130J विमान से मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलिन ने बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सुव्यवस्थित रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं, जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। PSA बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के NUNG को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आमना सामना होगा। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। मयंक ने 9 राउंड की ओपन चैंपियनशिप में 7.5 अंक जबकि प्रतीति ने 7.5 अंक हासिल कर लड़कियों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।